0: gebo ta na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de mo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhan ni xia zhu ji chai zhe
1: o ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: और ये गेम जो जितला जिप सिंह हो मछुमा के गेग मोटा तो न्यू से के जो लंका मास दे जिना नो येंदा ला यांस चाउ रे हो होयो मछु जो जिता मुन्यो दो संग तांगा मोटा तो तो मट ताते ले गेम गने जिप जो लंका बि पेडो रे
0: जे जे तांगा ह गिंग के के शाम बत कि छि इन रो तिन मुन्ये ला संग जो रे
1: ओ रे जे जे
0: लंका के गुतु तो आमे छाया बस्तु ना जे पिन जो
2: 好有了把做金不没有危机场面解决蓝阔了马子有呢也不有这句蓝不毛那样电压着句早晚机这句蓝句用蓝图可得牛子千里过的没动啊等可得金钱多了没动啊除了多你可得没动啊可得公个
3: 三门也往记下去，搁清不了。最近两次，真正这次来送这去年，罗兰店家的，也是学生的店面，罗兰下都用下去，给你写的。店家的店面，这一可有钱，全部。